काल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करदे हन। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहिब ते ऊने साहिब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज के ऊपर, उथे बैठ के काल का कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यों पानी पीन लगता है तां इसते मुख विच मच्छी फस जाती है, दम रुक गया। ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज, ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओह भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहन वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करदे हन कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नू तां मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी उथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये शेर दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई। इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया, ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

जैसे एक जननी कै होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को पलना सो आए माए ग्रे काज लागे जाए, पलना सो आए माए ग्रे काज लागे जाए, सुन सुत रुदन पै पियावे मन मोद को।

ज्ञान मती घट चानना परम अज्ञान अंधेर मिटावे होए निमाणा तै पवे दरगे मान निमाणा पावे खसमे सोई पावंदा खसमे दा जिस पाणा पावे पाणा मन्ने मन्नीए अपना

गुरमुख पैर सकार थे, गुरमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे। तावन पर उपकार नो गुरसिखा नो खोज लहंदे, दुबदा पंथ न तावनी माया विच उदास रहंदे।

मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिर ऊपर, तब सोवत तै जाग्यो, कहा होत अब कै पछताए, छूटत नाहन पाग्यो। ए चिंता उपजी काट में है, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस में है पाग्यो।

गुर अंगद की ते गुरियारे गुरती जी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के नाम विचारे।

हमारी जेबा एक रुपया हर के गुण अगम अथार हम क्यों कर जाए हर तुम बड़ अगम अथार।

निर्मल निर्मल सूर्या, निर्मल निर्मल सूर्या, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंत

सरोही नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले जोधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचारदे ने, ओ शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती।

करे एक दे द्वय शुभता हाथ सोही शुभता हाथ सोही नमो लोहे की पत्रिका झलहे लहंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी फिरे शाम है मोख दाती।

खंडो खड़ग, अस्त्रपान खंडो खड़ग, तुक तवर आते अस्क्रपान खंडो खड़ग, तुमक तवर अर्पी सैफ सरोही सैफी, यही हमारे पीर सैफ सरोही सैफी, यही हमारे पीर तीर तू ही सैफी, तू ही तवर तलवार, तीर तू ही सैफी, तू ही तवर तलवार, नाम तुहारो जो जमे

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आदर दंती रंग।

0: भाई नंदलाल जी
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त
1: हमेशा जिंदा अस्त ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तल काल नसे हर सर धैले, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत प्राप्त होए।

0: और खास तौर पर जोड़ी दे बोलदा और ध्रुपद का संबंध है तुम सरवण किया हूं। गुरु गोबिंद सिंह कहें सेव करो करना निवकी, तो साहब कहें सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे,
1: सेव करो करना निवकी जैसे उपचार पुजा, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए,
0: दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर फतेह सतगुरु की। ए जो जंग विच फतेह हुई है ये किसी आदमी की नहीं, ये वाहिगुरू की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे,
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसे की फतेह चार कुंड के अंदर
1: रूम नाप तू बजाओ शाम मोहरा चला सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब दे वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब
1: सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
2: चार वर्ण
1: एक वर्ण कराऊं
0: वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं चार वर्ण एक वर्ण करा वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देख खालसे को

0: देख खालसे को तुर्क जाएंगे पाओ, देख खालसे को तुर्क जाएंगे
1: पाओ। एक चले
0: सिंह झूलन नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौ झुकाए। सवा लाख जब धुके पलीता, सवा लाख जब धुके पलीता, तबे खालसा उदे

दास दी अरस, दास दी बेनती प्रभु दे चरना विच। अरदास किस अगे जो सुखां दा दाता है, जो पै पंजन है, साडे डर दा नाश करन वाला, साडे दुखां नूं दूर करन वाला ते सुखां दा प्रकाश करन वाला ऐसा प्रभु परमेश्वर जिस दे चरना कमलां विच दास ने अर्ज करनी है, अरदास करनी। अरदास दा मकसद एहो ही है कि आउन वाला जो समा है मनुख उस तों जाणू नहीं कि आउन वाले समय दे विच की हो सकदा है, सुख मिल सकदा है या दुख मिल सकदा है, मगर जो परमेश्वर है, जो साडा साई है, साडा खसम है, उसनू ज्ञान है, वो जानदा है कि आउन वाला समा कैसा है। ते मनुख उस शक्तिमान परमात्मा दे चरना कमलां विच ए बेनती करदा है कि है मेरे साहिब, मेरा आउन वाला जो समा है उस दे विच मैनू सुख प्राप्त हो, मैं इसे करके तेरे चरना कमलां विच अरदास करदा। ते साहिब फरमाउंदे हन कि ऐ गुरसिख तू उस दी रहमत दा पात्र बन, क्यों जो ओ तेरे ते मेहर कर देवे ते तेरे सारे कारज रास हो जाणगे। मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास। साहिबां दा फरमान शब्द।

परम सम्मान्य गुरु खालसा साहब सिंह जी, आप जी बड़े प्यार साहब, श्रद्धा साहब, धन धन श्री गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, तिना का धन्यवाद करते हुए खालसा पंथ के सृजन हारे दाता की सिफत सराह अपने शुकराना करने बाणी नाल जुड़ा गुरसिख साध संघ ने यत्न किया है। बहुत ही श्रद्धा योग कदम है। एक गल याद रखने वाली है, वो है अपने पिता का विरसा। जे असी अपने पिता के वारस हां, जायदाद असां पिता की सामनी है, हक असी जताते हैं, तो फिर यह शब्द जो कहे हैं गुरु साहब जी ने कहो जहा खालसा साजिया तिख्या है, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंजक नायन के। गुरु नानक जी का की कथा है, गुरु चेला बनिया चेला गुरु बने, इस करके कोई गुरु अते चेले में भेद नहीं रहा। एक गल होर याद रखने वाली है, गुरु साहब ने सानू गल ला लाया, आनंदपुर का वाकया याद करो, सिंह विदावा लिख के दे गए, आपे अपने घर प्रत आए, उन्होंने मरी हुई अणख न जगाया कि ने कर दिया माताओं भैन सिंघनिया ने। मैं जो तत् विचारिया है, अगर अजकल दिया पत्नियां भैन माताओं इस गल का प्रण कर लैन कि गुरु दे सिख अखवाण वाले अते गुरु नूं विदावा लिख के चल रहे गुरसिख अगर गुरु दे बनना चाहते हैं, अगर गुरु का अखवाना चाहते हैं, तो गुरां का हुक्म मने। ऐसी गल ना होवे, असी भुले हुए छेती घर नूं प्रत आईए ते अच्छा है। ऐसा ना होवे के घर प्रत के फिर जिनी कुर्बानी चाली सिंघां नूं करनी पई, इतिहास आपके सामने है। सो ऐसे दशमेश पिता जिन्हां ने सानू गरीबां नूं लताड़िया होया नूं गले गाया, ऐसे शहनशाह मतलब भाई साहब भाई नंदलाल साहब जी ने जो शुभ वचन कहे हैं आप प्यार साहब,